0: जामिनी, मेरा सिर बहुत गर्म हो रहा है।
1: 5 दिनों से तेल नहीं लगा ना, इसलिए ठंड कम हो जाए तो लगा दूंगी।